0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963 5757। Greens by Danio, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai।
6: ताज़ा करें अपनी यादें Nykaa Gold के साथ।

साहेब, ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए, लो साहेब हमसे रूठ गए।

0: ये है लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simzy before we left London.
2: Simzy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
6: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
7: न झटको ज़ुल्फ़ से।

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे।

मैं विसर ना जाए जे जु चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवे।

जन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथस्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सत

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

आद अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

0: What a classic. I do love this one. It's Amit Kumar and Lata Mangeshkar on the vocals. A very nice happy-go-lucky type song, right? Subah subah ke liye. बातों बातों में से आपने सुना ये प्यारा सा गाना, और उससे पहले दो बैक टू बैक गाना मैंने सुनाए आपके लिए. एक था कभी हाँ कभी ना से और फिर द बर्निंग ट्रेन. अभी लेट्स प्ले वन मोर क्लासिक. लेकिन फर्स्ट
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप. सेंड मनी टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन.
0: और इफ वी टॉकिंग करेंसीज दिस मॉर्निंग देन पाउंड कैन बाय यू सॉरी नो पाउंड कैन बाय यू Sorry, currencies are trading at, forgive me, 126.81 Indian rupees, 372.86 Pakistani rupees, 446.19 Sri Lankan rupees.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is trading at £103.35 sterling per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: We head back to the music. So, from the film Izzat, Lata Mangeshkar, Mohammed Rafi in the vocals. Don't forget, after 7 o'clock, Bollywood flashback.

0: Angels Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Travel Hub Best सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
1: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
3: चलो जाइए एक नवा सफर पर
4: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
5: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: Search is changing.
9: Customers aren't just using Google anymore.
8: They're asking AI.
9: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
8: One business, one recommendation.
9: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
8: Will your business be the answer?
9: Or the one that got left behind?
8: The future of search has already started.
9: Have you? Visit HeartyHanks.com and make sure AI recommends you.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
11: एविक्शन Tenant dispute? Property का मसला? Kenton Solicitors London landlords और tenants के लिए fast action लेते हैं और residential और commercial conveyancing plus commercial leases handle करते हैं. अभी call करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
12: Every parent wants their child to grow up healthy. HPV, the human papillomavirus, is a common infection that most people don't even know they have. However, it can lead to cancer in men and women. The HPV vaccine can stop this and is available for every child from age 12 and offers long-term protection with just one jab. Say yes to cancer prevention. Make an informed choice. Find out more at nhs.uk/HPV or contact your school immunizations team.
13: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
14: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

ना के हाँ और सुनो हाँ एक परी थी क्या एक परी थी तोता परी हंसी वो बड़ी थी गगन देश था उसका क्या गगन देश था उसका अजब भेष था उसका चले रात आगे सुनो सुनो बात आगे सुनो सुनो सुनो तो अरे अरे सुनो तो हाँ

0: Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
5: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
6: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
7: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: A gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day इन अंबाला स्टाइल
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-776-333 नाउ एप्टा बॉन्डेड Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
6: It's India versus Pakistan, and this is India's lineup.
7: This tune, the FIH Hockey Pro League, brings one of sport's greatest rivalries to London.
8: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
7: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
8: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
6: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
9: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
8: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
9: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
12: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा पता लगाने का एक ही तरीका है अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129-9840 TW Pays हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत
13: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better. On the Like a Radio Network.

गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में।

0: मंगलवार वर्ष 2026 के जून महीने की 16 तारीख और वक्त हो गया भाई 10:05 यानी हमारी आपकी मुलाकात का समय। माय नेम इज रवि शर्मा। पहले तो भाई धन्यवाद दें काजल को, शील बी बैक टुमारो मॉर्निंग, नहीं शी वॉन्ट बी, वगैरह मैं नहीं आ रही हूँ कल। काजल अगर नहीं आओगी तो मेरी कॉफी कौन लेके आएगा? देखो आप आओ ना आओ मेरी कॉफी जरूर आनी चाहिए, बता दूं आपको। भाई एक काजल है और एक यहाँ पर खुश हैं, ये दो लड़कियाँ बहुत ख्याल रखती हैं शर्मा जी का, थैंक यू वेरी मच। तो साहब काजल फिर फ्राइडे को आएंगी, ठीक है, तब तक उनकी जगह भरने के लिए कोई ना कोई तो स्टाफ में से जरूर आएगा भाई और आपका दिल बहलाएगा। और भाई अगले हफ्ते से रवि शर्मा भी जाएगा, क्योंकि छुट्टियों पर सब जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं, इतना बढ़िया मौसम हो। और भाई इतने सारे बहुत सारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स हों तो बंदा छुट्टी करने को भाई मचलता है, और अगर छुट्टी ना मिले तो वो बीमार होने से भी नहीं टलता है। हाँ ऐसे में तो कोई बहाना तो चाहिए ना। खैर साहब आपसे मिलना जुलना भी हॉलीडेज से कम नहीं है, तो साहब शुरू करें।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Leica Radio 90s. Leica Radio Punjabi. Leica Gold 2. Now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: बांध ले मेरी वफा आंचल में, ये मेरे प्यार की निशानी है। इन लबों से सजा सुना कोई, इन निगाहों से हार मानी है। दिल ने खाई है मात तेरे हुजूर, जान भी अब यही लुटानी है। आजकल का नहीं है ये किस्सा, मेरी दीवानगी पुरानी है। मेरी दीवानगी पुरानी है, मैं पुराना नहीं हूं, सिर्फ दीवानगी पुरानी है।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बैक टू बैक संगीत का एक गीत वहाँ पर रखा अपनी जगह, वो शुरू ही नहीं हुआ, अब होगा, शुरू होगा, लेकिन पहले आप नोट कीजिए आज का रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके कितने पैसे दे रहे हैं एक पाउंड के बदले. वेल दे आर गिविंग 126.45 रुपीस, 126 रुपये और 45 पैसे का रेट चल रहा है. लेकिन इसके साथ साथ भाई जून महीने की वो ऑफर भी साथ है, यानी इफ़ यू सेंड 1000 पाउंड्स यू नो एक उसमें तो SBI योनो ऐप के माध्यम से या ब्रांच में जा कर के ये ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके लिए चांस है 75 पाउंड्स का वाउचर जीतने का. एवरी डे दे रहे हैं ये इनाम. इसके अलावा अगर 2000 पाउंड या उससे ज़्यादा भेजते हैं तो देर इज़ अ चांस टू विन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एंड दिस इज एवरी वीक इज़ गिवन. तो भाई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, लेकिन ये ऑफर्स जो है जून के महीने के आखिर तक है, फायदा उठाइए.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: बैक टू बैक संगीत से जुड़ा था ये गीत, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, नौशाद साहब का संगीत और फिल्म भाई दिलीप कुमार वैजयंती माला वाली पुरानी फिल्म.

0: Leica Gold.
1: Leica Gold.
2: Leica Radio.
3: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
4: और लीजिए साहब, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, बड़ा दिलचस्प दौर है भाई फुटबॉल प्रेमियों के लिए। और भाई ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर छूटा ये मैच हुआ। और आज के मैच के बारे में बता दें भाई, फ्रांस और सेनेगल की भिड़ंत होगी 8:00 और 11:00 इराक और नॉर्वे भी एक दूसरे के सामने होंगे। लेकिन साहब, ये जो ईरान वाला मैच है ना, ये ऐसा लग रहा था जैसे ईरान वर्सेस ईरान खेला जा रहा है। इस मुकाबले को ईरान बनाम न्यूजीलैंड के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन स्टेडियम के बाहर और दर्शक दीर्घा में जहां पर भाई वो देखने वाले जो थे बैठे थे, वहां पर गूंज रहे नारों में ईरान के सबसे मुखर विरोधी न्यूजीलैंड के नहीं बल्कि खुद ईरान के कुछ असंतुष्ट नागरिक थे, जो ईरान विरोधी यूं कह लो। तो ईरानी टीम के अधिकारियों ने कई बार कहा कि वे चाहते हैं कि फुटबॉल लोगों को एकजुट करे, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल भी एकजुट नहीं था। शायद विरोध कर रहे थे भाई वो ईरान के इस फैसले का, ये मैच के खेलने का। खैर साहब, दिलचस्प दौर है, दुनिया भर में निगाहें लगी रहती हैं स्क्रीन पर, भाई उस कमेंट्री पर जो फुटबॉल मैच से आती है, और आज का मैच भी दिलचस्प होगा। लेकिन भाई ये आप तक जानकारी पहुंचाने वाले हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो कहते हैं डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका। कितना फायदेमंद है साहब ये शब्द, ये टाइटल लाइका।
3: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भैरव भाइयों, अभी अभी स्क्रीन पर कुछ उभर के सामने आया है और इसने बताया है कि आज शर्मा जी आपके प्रोग्राम में एक कंपटीशन भी शामिल है। यस, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप विद एक्सक्लूसिव विद धर्मा प्रोडक्शन फॉर द गुजराती फिल्म जिंदगी वंस मोर, स्टारिंग सिद्धार्थ रेंडेरिया। और भाई ये फिल्म रिलीज हो रही है सिनेमाज में इस वीकेंड पर। वी हैव ए पेयर ऑफ टिकट्स टू गिव अवे टू स्पेशल इनवाइटी ओनली। और कौन होंगे भाई ये आमंत्रित व्यक्ति जो स्पेशल मेहमान बन के जाएंगे? स्क्रीनिंग हो रही है इस की फिल्म की जिंदगी वंस मोर एट द कोर्ट हाउस होटल नियर लंदन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन। बहुत बढ़िया भाई जगह है, वहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप प्राइवेट स्क्रीनिंग चल रही है, आपके लिए कुछ खास लोग ही होंगे। तो द स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस दिस थर्सडे 18th of June एट 6 PM। तो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, सुन लीजिए ध्यान से। सेंड द वर्ड जिंदगी। ए जिंदगी होता है कि जिंदगी होता है, अरे गुजराती माँ छेना भाई तमे जिंदगी लिखियो, JINDAGI, जिंदगी जेड से होता है लेकिन ये जिंदगी लिखना है आपने, JINDAGI, जिंदगी, ये वर्ड लिख के भेजना है। और उसके साथ भाई आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ये सब लिखना मत भूलिएगा। विनर्स विल नीड टू कलेक्ट द टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू ऑन द नाइट ऑफ द स्क्रीनिंग, यानी 18 तारीख को जिस दिन शो है, शाम 6 बजे शो है, तो थोड़ा पहले जा करके टिकट्स कलेक्ट कीजिएगा और फिर मज़ा लीजिएगा फिल्म का। द टिकट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद एनी अदर स्क्रीनिंग और फिल्म। तो भाई मैं आपको बता दूं फिर से, आपको अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिखना है और ये सिर्फ इसलिए आपके ID पर्पज़ के लिए चाहिए। तो ये दो चीज़ें और साथ में जिंदगी, नॉट जिंदगी, जिंदगी लिखना है आपने, JINDAGI। तो पार्टिसिपेशन आपका हो जाएगा और विनर का नाम मैं इसी कार्यक्रम में आगे चल करके अनाउंस करूँगा। ऑल द बेस्ट। समय हो गया है खबरों का, लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़ टुडे।
0: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
2: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। पहले तो चर्चा करें फुटबॉल कप की। ईरानी टीम के कोच कह रहे हैं भाई मैक्सिको के प्रशंसकों ने, फुटबॉल फैंस ने हमें अलग थलग महसूस नहीं होने दिया। यानी वो जो घटनाएं पिछले कई दिनों से घट रही हैं उनका असर जो है कहते हैं हमें महसूस नहीं हुआ। ईरान की फुटबॉल टीम के जो चीफ कोच हैं उन्होंने कहा, अमीर गोल नहीं उनका नाम है, उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से मैच के बाद मुकाबले के दौरान मैक्सिकन लोगों ने ईरानी टीम को बिल्कुल भी अलग थलग महसूस नहीं होने दिया, पूरी सपोर्ट मिली, प्यार मिला। ईरानी कोच ने मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की ओर से उनकी टीम के अमेरिकी जमीन पर रहने को लेकर लगाई गई समय सीमा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें माहौल में ढलने के लिए 2 हफ्ते पहले आने की इजाज़त नहीं दी गई और अब आराम करने के बजाय उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा। ईरानी टीम को अमेरिका छोड़ने से जुड़े सवाल के जवाब में गालिनोई ने कहा कि ईरानी टीम वर्ल्ड कप के इतिहास में शायद ऐसी टीम है जिसका सबसे अधिक उत्पीड़न किया गया, टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। और अब देखते हैं भारत से आने वाली खबरों में। भारत में पंजाब में एक मसला खड़ा हो गया है। भगवंत मान को अकाल तख्त की ओर से खालसा

0: पंथ का विरोधी करार दिया गया है। क्या कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनका रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि धर्म का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है। मंगलवार को एक वीडियो जारी करके आज सुबह सुबह मान ने कहा कि जब मुझे अकाल तख्त साहब की ओर से बुलाया गया, वहां भी मैं यही कह के आया हूं कि इस वीडियो में भाई मैं नहीं हूं। असल में क्या है कि वीडियो में कोई ऐसी हरकत की गई है जो भाई सही नहीं है, जो एक गलत एक्ट है, और उसकी तो नेचुरली बदनामी हो रही है। पर मान साहब कह रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं। जो बंदा उस वीडियो में है वो ना तो मेरी कदकाठी का है, ना ही मेरे शरीर की बनावट उससे मिलती है। पर मैं हैरान हूं कि इतने बड़े धार्मिक अहदे पर बैठे लोग अपनी सियासी हुक्मरानों की सह पर इस तरह का झूठा प्रोपगेंडा कर रहे हैं और मुझे बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए हुए प्रारंभिक समझौते को शुक्रवार से पहले पब्लिक करने का फैसला कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। वेंस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को करीब डेढ़ पन्ने का एक बहुत ही सामान्य डॉक्यूमेंट बताया है। अमेरिका के सीनियर अफसरान ने भी ये समझौते से जुड़ी कुछ जानकारी साझा करनी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि शुक्रवार 19 जून को हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा और इसी दिन जिनेवा में इस समझौते पर औपचारिक रूप से यानी फॉर्मली दस्तखत किए जाएंगे। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप फ्रांस में ऑर्गेनाइज्ड G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारत से आने वाली खबरों में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी के स्पोक्स पर्सन संजय राउत ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें पार्टी में टूट के दावे किए गए थे। आज सुबह सुबह संजय राउत का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी 9 मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। ये सरासर झूठ है कि भाई वो हमारे पास नहीं है, उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है। 4 दिन पहले ये सभी सांसद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग बुलाई थी, उसमें शामिल हुए थे और हमें उन पर विश्वास है और उन्हें अपनी पार्टी पर विश्वास है। फीफा वर्ल्ड कप मैच में भाई पहला मैच जो है, दूसरे मैचों के नतीजे भी आपको बता दें। वैसे तो हम हर घंटे बता रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ पर ख़त्म हुआ है। दोनों ही टीमों ने 2-2 गोल दागे। मैच में ईरान ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की और ईरान के लिए रामिन रेजाइन और मोहम्मद मोहबी ने 1-1 गोल किया। आज के मुकाबले की जानकारी आगे चलकर हम आपको देंगे। ईरान और अमेरिका के समझौते के ऐलान के बाद लेबनान के जो लोग विस्थापित हो गए थे, जो अपने घरों से उखड़ कर उजड़ कर गए थे, वो अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से बाद में आए बयान में कहा गया है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। वहीं इसराइल की ओर से कहा गया है कि उसकी फौज दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। पर इसी बीच बड़ी संख्या में लेबनान के लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। हालांकि अधिकारियों ने वार्निंग दी है कि हालात अभी तक पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि देश के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खोमनेई ने अमेरिका के साथ समझौते में देश के राष्ट्रीय इंटरेस्ट की रक्षा करने वाले प्रावधानों को शामिल कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यानी उन्होंने अपने मतलब की बातें इसमें शामिल करवाई हैं, देश के मतलब की बातें। पर नेतान्याहू कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ईरान समझौते के बाद भी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने इसराइल को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा और ज़रूरत पड़ने पर अपनी रक्षा और अपना बचाव करना होगा। भाई फीफा वर्ल्ड में खिलाड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इनार और न्यूजीलैंड के बीच जो उत्तरी अमेरिका के समय के अनुसार लीग मुकाबला खेला गया, दोनों ही टीमें ग्रुप जी का हिस्सा हैं। इसमें एक खिलाड़ी भारतीय मूल का है, सरप्रीत सिंह, उसे मौका मिला है। और भाई सरप्रीत सिंह के खेलने की खबर सुन करके उनके जानने वाले भारतीय और पंजाबी बड़े उत्साहित हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद अमेरिकी एयरफोर्स का एक B-52 बॉम्बर प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यह हादसा कल सोमवार को लोकल वक्त के अनुसार सुबह 11:20 पर हुआ, जब हवाई जहाज ये विमान एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था। हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठा, जिसे मीलों दूर तक देखा गया। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि इजराइल और ईरान युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर दस्तखत कर चुके हैं और इस समझौते का ब्यौरा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं। भाई वो जो कंपटीशन हमने शुरू किया उसके लिए शायद मैंने नंबर नहीं बताया था, मैं फिर बता दूं। वैसे अपने बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे कंपटीशन का नंबर इतने बार दोहराया जा चुका, सब जानते हैं कि कहां पर जानकारी भेजनी है। आपने अपना नाम, फ़ोन नंबर लिख करके और जिंदगी शब्द लिख करके भेजना है। उस फिल्म के टिकट्स के लिए कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो किस नंबर पर? 07-424-23-23-23। ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, मुझे भी ज़बानी याद हो चुका है, तो आपको क्यों नहीं याद होगा? भाई आप जानते हैं मेरी तो मेमोरी जो है वो खाली मेमोरी तो रही नहीं, अब खाली मोरी रह गई है, पर याददाश्त अच्छी है। ये नंबर सबको याद हो चुका, कंठस्थ तो कई तो इसको कई बार कर भी चुके हैं इस्तेमाल। तो भाई 07-424-23-23-23 पर जिंदगी लिखिए, बहुतों ने लिख के भेज भी दिया है, अपना नाम और फ़ोन नंबर भी लिखा है। और सुनते रहिएगा प्रोग्राम, मैं बताऊंगा कि किसके हिस्से में ये फिल्म का भाई शो देखना जो है लिखा है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कुछ और भी सूचनाएं हमारे पास हैं आप तक के साथ साझा करने के लिए, और उनमें एक ये है कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ टीम्ड अप विद एक्सक्लूसिवली, ये तो वो धर्मा प्रोडक्शन वाली जानकारी मैं दे चुका हूँ आपको। फिल्म जिंदगी का कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक और जानकारी थी ये वाली, और ये है तारिक हलाल की ओर से। लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे, यानी कल 17 जून को। और ये कहाँ खुल रही है? 297 रेनर्स लेन पिनर में। भाई फर्स्ट 100 कस्टमर्स विल हैव द चांस टू क्लेम अ गोल्डन टिकेट ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। स्पेंड £1 भी खर्च करेंगे तो अभी आपको £50 वर्थ फूड जो है के आइटम्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। TNC अप्लाई। लाइका रेडियो नेटवर्क विल ऑल्सो बी ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम देयर फ्रॉम 10 AM अंटिल 1 PM।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: अमित अंकल,
2: रंग बरसे,
0: ये आज भी बरसाएंगे, होली का गीत है।
2: चुनर वाली रंग बरसे,
0: बरसाओ बरसाओ, भिगाओ रंग वाली को के हमारा क्या जाता है।

होली नहीं है आज, पर रंग बरसा रहे हैं अमित अंकल, तो भीगना पड़ेगा। हो जाओ शुरू अंकल।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। चिंतन से शुरुआत करते हैं हम। माय नेम इज रवि शर्मा। लाइका गोल्ड पर मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूं, लेकिन 11 बजे की खबरों के बाद यह पड़ाव आता है जो अपने साथ एक विचार लाता है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार, आज का चिंतन। और आज का चिंतन हम दलजीत जी और तिलाश जी की ओर से समर्पित करना चाहते हैं स्वर्गीय श्री बालकृष्ण शौनक जी को। बालकृष्ण जी का पिछले दिनों निधन हुआ। अब उनके परिवार वालों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी छमाई और बरसी बड़ी निष्ठापूर्वक संपन्न की। अतिलाश जी और दलजीत जी और उनका सारा परिवार, विशेषकर बालकृष्ण जी की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष शौनक जी ने पूजा पाठ यज्ञ हवन के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी, याद किया, उनके लिए पूजा पाठ किया। लेकिन साहब, एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, जब कोई अपना बिछड़ जाता है ऐसा लगता है जैसे शरीर का हिस्सा कोई कटकर अलग हुआ है। तकलीफ होती है, दर्द बहुत देर तक रहता है, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते और जाने वालों की यादें कहीं नहीं जाती हैं, हमेशा दिल में बसी रहती हैं। ऐसे में एक प्रश्न उठता है। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई अपना बिछड़ता है ना, तो शरीर 5 तत्वों से बना है और 5ों तत्व जो है वो अपने अपने सोर्स में लौट जाते हैं। अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, और आकाश यानी खाली स्थान व्यापक हो जाता है आकाश में। परंतु ये तो शरीर के तत्व है ना, इस शरीर को चलाने वाला आत्मा कहां जाता है? ये सवाल कईयों के मन में उठता है। शरीर के 5ों तत्व अपने सोर्स में लौट जाते हैं, तो आत्मा, रूह, स्पिरिट कहां जाती है? तो शास्त्रों से जवाब मिलता है, जहां से आती है, क्योंकि वो मिटती तो है नहीं। मिटती तो कोई भी चीज नहीं है, ये साइंस का कहना है और यही सनातन पद्धति का कहना है। यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनीथिंग, थिंग्स डू चेंज शेप। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो पानी बनता है, आपने क्रिएट नहीं किया है पानी। साहब, शरीर का निर्माण होता है, फिर उसका विघटन होता है, फिर आत्मा कैसे बनता है, कहां जाता है, यह सवाल उठता है। तो कहते इस पर विचार हुआ, आत्मा परमात्मा से आता है और परमात्मा में ही लौट जाता है। परमात्मा कभी नहीं मरता, ईश्वर शाश्वत है तो आत्मा भी शाश्वत है। अब साहब, ये सवाल उठाकर जवाब ढूंढते ढूंढते हम आ गए इस मोड़ पर कि हम जब भी किसी पुण्य आत्मा की, दिवंगत आत्मा की समर्पित करते हैं, उनकी छमाई पर, बरसी पर उन्हें याद करते हैं, तो उन्हें घटाकर क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो परमात्मा अपने बच्चों को कभी भी उदास, परेशान, रोते हुए, मोह में तड़पते हुए नहीं देखना चाहता, वो उन्हें खुश देखना चाहता है। हमारे पितृ, हमारे पूर्वज भी जब ईश्वर में विलीन होते हैं तो ये कामना करते हैं कि परिवार वालों रो मत, मैं ईश्वर में मिला हूं, जब कभी भी आप ईश्वर की अनुभूति करेंगे वो मैं ही हूं, उसमें विलीन हूं। संत महात्माओं के विषय में तो कहते हैं कि वो ब्रह्मलीन हो गए, मृतक नहीं कहते हैं। हर आत्मा परमात्मा में जाके विलीन होती है तो वो खुश है, वो प्रसन्न है, वो ईश्वर के पार्ट है। और आपसे कहते हैं कि आप भी अब मॉर्निंग पीरियड को समाप्त करके लुक फॉरवर्ड, जी कर दिखाओ, खुश रह के दिखाओ, सेलिब्रेशन करो, बहुत देर तक मॉर्निंग ना करो, शोक में समय मत बिताओ। और इसलिए आप देखेंगे कि सनातन पद्धति में
हर काम घटा के किया जाता है, यानी 13वीं करेंगे तो 11वें दिन पर कर देंगे, 12वें दिन पर कम करके करेंगे, छमाई करेंगे तो कम करके करेंगे, बरसी करेंगे तो 11वें महीने में कर देंगे 12 महीने की बजाय। और भी कम कर सके तो छोटा करो, गम के पीरियड को छोटा करो और आगे देखो खुशियों की ओर, आगे देखो जीवन की ओर, मृत्यु को भुला दो, क्योंकि मृत्यु कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो ईश्वर में विलीन हुए हैं। अब भाई सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम आ गए इस मोड़ पर जहां एहसास होता है ये आत्मा कहां जाता है, दुनिया से जाने वाले कहां जाते हैं, कहां ढूंढे उन्हें, कहां मिले उनसे, ईश्वर में।

0: जाने है वो कौन डगरिया, आए जाए खतना खबरिया। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, और हर आत्मा उसी परमात्मा का स्वरूप है, उसमें विलीन होती है, वहीं से आती है। अभी जो गीत आप सुन रहे थे स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जवाब मिला, पुष्पांजलि फिल्म का गीत था। और भाई ये गीत और ये आज का चिंतन समर्पित स्वर्गीय बाल कृष्ण शौनक जी को, उनके भाई दलजीत शौनक और उनकी भाभी तिलाश की ओर से उन्हें समर्पित, उनकी धर्मपत्नी बालकृष्ण जी की, संतोष शौनक जी ने चाहा था कि भाई आज का चिंतन उनके पूज्य पति देव को समर्पित किया जाए। चिंतन के लिए तिलाश और दलजीत का धन्यवाद और श्रद्धांजलि उनके सुपुत्र भरत और पुत्र वधु सविता की ओर से, बेटी संगीता और दामाद सुनील की ओर से, गौरव और देवेन की ओर से, साक्षी और संजना की ओर से, यानी सारे शौनक परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित। और इसके साथ ही भाई संदेश के लुक फॉरवर्ड नाउ, घर में परिवार में अब मॉर्निंग पीरियड को कम्प्लीटली समाप्त करके अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उस ईश्वर की खुशी के लिए, अब खुशियों में आप देखें आगे, लुक फॉरवर्ड, डू सेलिब्रेशन, अच्छे समय का रास्ता देखें और अपने जीवन में लाएं, मुस्कुराएं, हंसे और बताएं उन्हें कि हम आपके आशीर्वाद से खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब आज का चिंतन, आज का विचार है ना भाइयों, एक संदेश कि हमारे पितर तभी खुश होते जब हम खुश रहें। समाप्त करते हैं चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे के खबरों के बाद, मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, चिंतन समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाना चाहते हैं तो रेट अच्छा चल रहा है आजकल। For £1 they are giving 126.45 rupees भारतीय करेंसी में, भारतीय मुद्रा में। लेकिन भाई इसके साथ साथ कुछ और भी है, ये पैसे आप अगर उनके योनो ऐप के माध्यम से या उनकी ब्रांच में जाकर के भिजवाते हैं, और अगर राशि £1,000 से ज़्यादा है तो देर इज़ ए चांस टू विन ए £75 वाउचर एवरी डे। यस एंड देर इज समथिंग मोर, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक इफ यू सेंड ओवर £2,000। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: वर्ल्ड कप फुटबॉल का जिक्र कर रहे हैं भाई, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में ये बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, और इस आयोजन में भाई रोज़ कई कई मैच होते हैं, हमारे से तो हिसाब किताब रखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप का ईरान का पहला मैच ड्रॉ रहा, दूसरे मैच के नतीजे सामने आ रहे हैं। आज जो मैच खेले जाने हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, तो आज के मैच की एक तो ये भी बात है कि भाई समय का जो फ़र्क है उसमें हमारे यहाँ जो आज होता है उनके यहाँ भी होता तो आज है, लेकिन कई बार उनका अगला दिन शुरू हो जाता है, हम रात में सोए हुए होते हैं और वो नेक्स्ट डे में काउंट होता है। वेल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज होने वाले जो मैचेस हैं उनमें कौन सा है, लीजिए साहब, लगता है कि कहाँ पर हैं, ईरान और न्यूजीलैंड के बीच जो है कल हुआ था मुकाबला, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा ग्रुप एच में स्पेन और काबो वर्दी के मैच की रही थी। काबो वर्दी की टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का हिस्सा बनी है, जबकि स्पेन एक बार फीफा का चैंपियन भी रह चुका है। उसके बावजूद शानदार प्रदर्शन भाई काबो वर्दी का, मैच 0-0 से बराबरी पर ख़त्म किया। और साहब आज के मैच की बात करें तो आज जो मैच होने हैं वो फ्रांस वर्सेस सेनेगल और इराक वर्सेस नॉर्वे। भाई शाम 8 बजे फ्रांस वाला मैच है और इराक नॉर्वे का रात 11 बजे ये मैच होगा, यहाँ के समय के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और स्कोर से हम आपको जोड़े रखेंगे क्या होता है मैदान में, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। लेकिन इसके अलावा भाई एक और जानकारी हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि अगर आप हमारे जो स्पॉन्सर हैं फुटबॉल मैचेस के बारे में जो ये जानकारी भिजवा रहे हैं, डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk। ये है लाइका गोल।

0: आ नीले गगन तले प्यार हम करें। बादशाह था फिल्म का नाम भाई, 1954 में आई थी और उस जमाने में ऐसे गीत बनते थे। हेमंत कुमार का स्वर भाई इसमें शामिल था और आपको बता दें कि हेमंत दा अगर आज दुनिया में होते ना तो अपना जन्मदिन मना रहे होते, June 16, 1920, दैट वॉज द डेट टाइम ईयर भाई। बनारस में उनका जन्म हुआ था, वाराणसी जो शहर है, काशी जी जिसको कहते हैं। और भाई हेमंत दा की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी हुआ था और संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान वैसे तो पूरी फिल्मी दुनिया में, भाई उनके परिवार के और लोग भी जो हैं वो फिल्मों में बड़े एक्टिव हैं। कई जो है एक्टर्स और म्यूज़िक से जुड़े लोग जो हैं वो फिल्मों में योगदान दे रहे हैं, पर हेमंत दा को हम याद करते हैं, आज उनका जन्मदिन पड़ता है। और भाई जन्मदिन तो और भी बहुत सारे लोगों का आज है, हमारे श्रोताओं में अगर किसी का है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड आज इम्तियाज़ अली एक डायरेक्टर है, उनकी फिल्म भी आने वाली है ना, वो लौट के आऊँगा समथिंग भाई, वो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1971 में जन्मे थे 16 जून को। और किसका जन्मदिन है आज, है ना एक भाई जाने माने, वो पॉलिटिशियन भी हैं आजकल तो और हीरो भी रहे हैं अपने ज़माने में, कौन है वो, सुनवाते हैं इस गीत में, फिर आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: हाँ तो दादा मेरी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, सबको बता दीजिए कौन है आप।
3: कौन हो तुम?
4: आई एम कृष्णन अय्यर यम या
3: यम ये
4: यम यम यम या तो भाई नंबर को भेजा तुम्हारा बॉडी का गार्ड करने के लिए।
3: बॉडी गार्ड?
4: यस।
3: वाव चिकना है।
5: शिक्षा ही सूट्स यू।
3: शट अप।
0: दादा लड़कियां इंसल्ट कर रही हैं।
3: कृष्ण अय्यर यम ये।
6: कैन यू सिंग? कैन यू डांस? कैन यू डिस्को?
0: दादा इज्जत का सवाल है, कुछ करो और कुछ नहीं तो उनको झाड़ दो, डांट दो। तो बंगाल में आपकी सरकार भी आ गई है, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा दादा, कुछ बोलेगा नहीं भाई, दादा कुछ तो बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए।

0: मस्ती करते तो मेरे का मजा करते, मेरा साउथ का मजा करती है। देख आज मैं लूंगे उठा का तुमको डिस्को नारियल दिखाएगी।
1: दादा लुंगी उठा के दी, लुंगी गिरा के।

0: नारियल पानी वाले भाई, ये कर्नाटक के नहीं है, बंगाली बाबू है, लेकिन कृष्ण भैया हमारे देशराज भाई कहते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर इम्तियाज अली तो 51 बरस के हुए, लेकिन मिथुन दा तो मिथुन दा यकीन नहीं आ रहा है, 76 के हो गए हैं मिथुन चक्रवर्ती, आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं भाई। ये गीत उन पर पिक्चराइज था, आज भी याद है लोगों को उनकी मस्ती, उनका डिस्को लुंगी उठा के। भाई मिथुन दा 76 के हो गए हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब वो सिर्फ अभिनेता नहीं है, अब वो नेता भी हैं। बंगाल में भाई भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रतिष्ठित प्रचारक रहे वो, और अब तो चुनाव जीत गई है उनकी पार्टी, लेकिन कोई मंत्री वंत्री बनाए गए कि नहीं पता नहीं भाई, मालूम नहीं पॉलिटिक्स में कब कहाँ किसकी जो है वो स्थिति बन जाती है, लेकिन बहुत क्या करेंगे भाई, मुखर वो पॉलिटिशियन रहे, चुनाव में उनके बयान बड़े जोर शोर से छपते रहे और उन्होंने अपनी पार्टी को जीत दिलाई। मिथुन चक्रवर्ती 76 ओल्ड टुडे भाई, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो बाले भाई लेके आएंगे, सभी के बारे में हम तो एक गीत बजा करके हैप्पी बर्थडे कह देते हैं, लेकिन बहुत सारा मसाला वो जुटा रहे हैं ऑलरेडी, तो बाले भाई लेकर के आ रहे हैं। तो दैट वाज द सॉन्ग टू द हैप्पी बर्थडे बॉय।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: Leica Extra में बता दें भाई आपको, हमारा नया एपिसोड जो है वो आ गया है, होस्टेड बाय अनुज राडिया, बॉलीवुड रिवाइंड। अब साहब बॉलीवुड में कितने परिवर्तन आए पिछले कई वर्षों में, वो पुराने वाले हीरोज की जगह नए नए एक्टर भी आने लगे हैं, क्या कुछ स्क्रिप्ट में म्यूजिक में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आपने महसूस किए, बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
4: ट्रेवल हब वर्ल्ड .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड .com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com।
6: Location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
2: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
8: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
9: This is huge.
8: Tariq Halal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
9: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
8: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
9: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
8: Tariq Halal, Rayner's Lane. There is only
3: 1.
10: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
11: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
10: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
11: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
12: Hi, hello, kecho, mucho, kechi, dave, ana, ashu, tego, arara, public demand, hariti, avi, rechu, london, maru, navu, natak, laine, patni, premier league, it's like a PPL, yes, from 3rd July till 12th of July, wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows, yaad rakhjo.
6: Patni Premier League shows at Risley, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
13: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
14: Four beers, please, garçon!
13: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे. Get ready for a full-on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie Badru Alright Che. In cinemas on 12th of June. For more info, visit Bakrania Media's Instagram handle.
16: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
9: 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner.

लौट आइए संगीत की ओर, एंजॉय कीजिए ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर जब मिलते हैं इस तरह के गीत बनते हैं।

0: याद दिला दूं अपने श्रोताओं को, भाई कंपटीशन अभी भी चल रहा है, वो जिंदगी वर्ड लिख करके भेजना है, स्पेलिंग गलत ही लिखनी है आपको, गलत नहीं है, वो गुजराती में जिंदगी ही बोला जाता होगा, जिंदगी नहीं, तो आप वो लिख करके भेजिए। फिल्म के दो टिकट्स इंतजार कर रहे हैं, किसके हिस्से में जाएंगे, कोर्ट हाउस में 18 तारीख को फिल्म दिखाई जाएगी भाई, ये बढ़िया होटल में प्राइवेट सिनेमा हॉल है, अच्छा लगेगा आपको वहाँ पर जा करके सिनेमा देख करके। तो कीप सेंडिंग योर एंट्रीज 07424232323 पर, रिजल्ट अगले घंटे में निकलने वाला है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और भाई आपको बता दूं, रेट्स जो है लैम्फाई के, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 126.88 रुपीस, पाकिस्तानी 373.55, श्रीलंकन 447.34 एंड बांग्लादेशी टकाज 164.93।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is sold at the rate of 104.25 pounds per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: TV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
3: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
2: Exclusive radio partner Like R. रेडियो।
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड।
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
9: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
8: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
9: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
8: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
9: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
8: Apple Pay is available on compatible devices. Terms, conditions apply.
9: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
10: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
11: Uncle tame pehla thi aavaj chho.
12: Aava etle keva.
10: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
12: Maro baap banvani koshish kare tu. बुद्धि बेची है वैसे तू? अरे जिंदगी अभी मौज थी जीव जे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे।
10: Our Father's Day, feel the emotions, love and family moments with Zindagi Once More in cinemas on 19 June. For more information, visit Bakrania Media on Instagram.
12: तो थई जाए, जिंदगी once more.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02
15: 4230396357 Greens by Danube. Prime location,
16: high appreciation
15: in Dubai.
17: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
18: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
17: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
18: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
17: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
18: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
19: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो. डिपार्चर 5 सप्टेम्बर ना मंत्रा हॉलिडेज. कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रेवल मंत्रा.
20: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
21: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
20: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
22: Every parent wants their child to grow up healthy. HPV, the human papillomavirus, is a common infection that most people don't even know they have. However, it can lead to cancer in men and women. The HPV vaccine can stop this and is available for every child from age 12 and offers long-term protection with just one jab. Say yes to cancer prevention. Make an informed choice. Find out more at nhs.uk/HPV or contact your school immunizations team.
23: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: खबरों के बहुत नजदीक हैं हम. अब से कुछ ही पल बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और समाचारों के उस पार हम फिर मिलेंगे. एक बजे तक हमारा आपका साथ बना रहेगा. भैया, आज के समाचारों में डोनाल्ड ट्रंप छाए हुए हैं. अब वो कह रहे हैं कि ये जो खबर उड़ रही है कि भाई जो समझौता हुआ ईरान और अमेरिका के बीच, उसके तहत अमेरिका ईरान में इन्वेस्ट करेगा, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, सब बकवास है.
24: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
25: Top stories this hour. Donald Trump's dismissed claims the US will be investing money in Iran as part of a peace deal, calling it a ridiculous rumor. With Washington and Tehran due to sign the agreement formally on Friday, the president says there'll now be a second stage of talks. He's adamant America's achieved its objectives.
26: They will not develop, purchase, buy, or any other thing. They're not going to acquire a nuclear weapon. If they do, all hell will rain down on them.
25: Mr. Trump's in France, where leaders of G7 nations are meeting. Meanwhile, the Prime Minister says justice has been done after two men were convicted over a series of arson attacks on properties linked to him.
27: Obviously, it was a bad attack, and all the details have now come out in court, and justice has been done. So I'm pleased in that respect, particularly for my family who were affected by it.
25: Roman Lavrinovich, whose 22 and 27-year-old Stanislav Karpiuk were found guilty yesterday. A car once owned by Sergei Starmer was torched in North London last May, and two houses were set ablaze. The Environment Secretary says she's not convinced a proposed £10 billion rescue deal for Thames Water is the right move for customers. Emma Reynolds has written to regulator Ofwat, sharing her concerns. Eight people have been killed after a US Air Force bomber crashed in California. The B-52 had just taken off on a routine test flight when it came down last night. The first eight closed grooming gang cases are to be reinvestigated by police forces. Operation Beaconport is looking into lines of inquiry that may have been missed. And a rare first edition copy of Wuthering Heights, complete with spelling mistakes, is up for sale. It's expected to fetch around £500,000 and is the first of Emily Bronte's original to be auctioned since 1908. From Sky News, I'm Fader Silver.
28: This is Leica Radio Network.
1: officially London's number one Asian commercial radio group.
2: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: Very good afternoon to you. मौसम के वाले भाई ये कह रहे हैं कि आज सुहाना होना चाहिए, मौसम सुहाना लगना चाहिए आपको, क्योंकि टेम्परेचर 25 डिग्री तक लंदन में और साहब 24 डिग्री तक जो है मिडलैंड में आज जाएगा। जेंटल ब्रीज यानी हल्की हवाएं चलेंगी और बारिश की आशंका ना के बराबर है, हालांकि बादल आते जाते रहेंगे।
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
3: Like a gold.
23: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a gold.
1: Let's return to the biggest hits. Back to back, sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: TravelHub.
4: At all protected.
1: Leica. Leica Radio Network, broadcasting across Greater London. Yeah.

0: सिर्फ दो घूट पीनी और बाकी मेरे ते रोड़ दिया, वेस्ट करने से क्या फायदा ये बताओ। बाकी मेरे ते रोड़ दे, मेरे ऊपर बखेर दे, बाकी खिंडा दे मेरे ऊपर। देखिए साहब, दारू अब मैं तो ठीक है, मैं तो शरीफ आदमी हूँ खैर, लेकिन आप ये बताओ वेस्ट करके क्या मिलेगा। हाँ, दो कोट पिला दे साकी, या बाकी मेरी थी रोड दे, हाँ बोतल खाली कर दे मेरे ऊपर, तो नहाएगा इसमें यार के पिएगा। नरेंद्र चंचल की आवाज में साहब ये गीत आपने सुना, और बड़ा नशीला गीत था। बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने परोसे आपको, और मुझे पूरा यकीन है दोनों आपको पसंद आएंगे। पहला गीत था लता जी और मोहम्मद रफ़ी, मैं आनंद बख्शी की आवाज़ में, आनंद बख्शी की आवाज़ भाई उसमें शामिल थी गीत में, एंड दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म चरस। और ये गीत जो अभी आपने सुना ये काला सूरज से लिया गया था। राइट, डोंट फॉरगेट टू डू द एंट्री। भाई मैं अभी थोड़ी देर में रिजल्ट बताने वाला हूँ कौन जाएंगे। वो जो फिल्म है दिखाई जा रही है कोर्ट हाउस सिनेमा में 18 तारीख को, और उसकी भाई दो टिकटें दाव पर लगी हैं। आपको जिंदगी लिख के भेजना है और अपना नाम और फ़ोन नंबर। मैं देखता हूँ बहुत लोगों ने भेजा है, गुजराती फिल्म छे तमें गुजराती छो तो भाई जाबानू छे। ओके, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरे गुजराती साथी, कहते जब आपको गुजराती बोलनी नहीं आती तो क्यों बोलते हैं, क्यों जो हिंदी बोलते हैं उनको हिंदी बोलनी आती है। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पैसे भिजवाना चाहते हैं तो भाई आज का रेट, टुडे दे आर गिविंग 126.45 इंडियन रुपीस फॉर वन पाउंड। भाई उनकी जो ऐप है ना योनो, उसके माध्यम से भेजें या फिर उनकी ब्रांच में जाकर के भिजवाएं, लेकिन पैसे भिजवाने का सही अवसर है, क्योंकि जून के महीने में कुछ खास ऑफर्स भी उन्होंने जोड़ रखी हैं कि इफ़ यू सेंड मोर देन 1000 पाउंड्स देर इज़ अ चांस टू विन 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे they are giving। और इसके अलावा 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds। TNC apply, terms and conditions।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers। Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch। T's and C's apply।
2: ये है
3: Leica Gold।
4: Attention meat lovers of Rainer's Lane,
5: this is huge!
4: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June, and you are all invited.
5: One day only, spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
4: But be quick, this golden giveaway is for the first 100 customers only.
5: Doors open at 10 a.m. sharp, 297 Rainer's Lane Pinner, HA5 5EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
4: Tariq Halal, Rainer's Lane, there is only one.
6: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Aji aisa mauka phir kahan milega.
9: Maharaja Tours la rahe hain Captivating China 2026. Shanghai, Beijing, Xi'an aur Chengdu ka unforgettable safar. Great Wall, Terracotta Warriors, high-speed trains aur adorable pandas. Flights, hotels, Indian khana aur guided tours. Sab have been included. From £3,299 per person, visit maharajatours.co.uk or call 07956 154 846.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
13: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
14: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
15: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Suites has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
16: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भाइयों भाइयों, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस सप्ताह के कलाकार कौन हैं। अरे साहब, बड़ा चर्चा है उनका, बड़ा खर्चा है उन पर। चर्चा इसलिए है कि भाई उनका शो हो रहा है 4 जुलाई को, और चर्चा इसलिए भी है कि भाई इस ज़माने के बहुत ही सुरीले गायक कलाकार हैं वो। कौन है वो, क्या नाम है उनका? आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज़ हरिहरन।

0: ये सुरीली आवाज हरिहरन की, भाई ये आर्टिस्ट ऑफ द वीक है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: वाह, शंकर जय किशन का वो संगीत जो किसी जमाने में हर किसी की जुबान पर था, गीत।

और गीत के बाद वही रिजल्ट आने वाला है कि फिल्म देखने कौन जाएगा, जिंदगी वंस मोर, जिंदगी नॉट जिंदगी।

गुजराती फिल्म वंस मोर। भाई बहुत सारी एंट्रीज आई है, बहुत लोग जाना चाहते हैं देखने के लिए। नोट कर लीजिए 18 तारीख को है शाम को शो जिंदगी वंस मोर, स्टारिंग सिद्धार्थ रंडेलिया, विच इज सिद्धार्थ रंडेलिया। और भाई ये वीकेंड पर सिनेमा में रिलीज हो रही है, लेकिन ये शो जो है 18 तारीख को स्पेशल स्क्रीनिंग है, 18 जून को थर्सडे को शाम 6 बजे। कहाँ भला? कोर्ट हाउस होटल, लंदन ऑक्सफोर्ड सीट के नज़दीक भाई। और वहाँ पर बड़ी मशहूर जगह है, वैसे बता दूँ बहुत सारी फिल्मों के प्रीमियर और बहुत सारी फिल्मों के प्री स्क्रीनिंग वहाँ होती रही है। बढ़िया हॉल है, जाइएगा। लेट मी टेल यू हु इज़ द विनर, कौन जा रहे हैं भाई। विनर का जो नाम आया है वो इस गीत के बाद बताता हूँ।

0: वो जमाना था जब वो आते थे ना एलपी, वो काले काले तवे, और उस पर सुई भाई कई बार अटक जाती थी, तो एक झलक जो पाता और फिर आवाज आती थी, राही वही रुक जाता, राही नहीं वो सुई रुक जाती थी, रुक रुक रुक रुक, रुक, रुक।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Ye hai
3: Laika Gold.
0: और साहब अब बता दो विनर का नाम। दो टिकट वहां पर इंतजार करेंगे, कोई आइडेंटिफिकेशन अपने साथ लेके जाना। आप हैं विनर, आप, अरे आप नहीं समझिए, यू आर द विनर नुसरत देवान। नुसरत जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, गो विद समबडी, दो टिकट हैं तो जाइएगा और ये गुजराती फिल्म को एंजॉय कीजिएगा। कोर्ट हाउस होटल नियर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, बड़ी मशहूर जगह है, बहुत बढ़िया होटल है, बढ़िया सिनेमा हॉल है उसके अंदर।

0: तो ये एक प्राइवेट शो लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा लगेगा कि भाई स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं आप लोगों के लिए। मैंने वहाँ एक फिल्म देखी थी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। वैसे बहुत सारी फिल्मों के प्रीमियर वहाँ हुए हैं, वो अच्छी जगह है और बड़ी शहर में ऐसी जगह पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन से बाहर निकल के कुछ ही कदम की दूरी पर है, तो गो एंड एन्जॉय। नुसरत देवोन इज़ द विनर, टेक सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ऑन 18th of June यू विल गेट योर टिकट्स देयर एट द बॉक्स ऑफिस।
1: Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
0: और बहनों भाइयों, ये जो क्या कहते हैं अपना women cricket चल रहा है ना, इसके ऊपर अगर best व्यक्ति कोई है तो उसका नाम है कमल प्रभाकर। और कमल जी अगर लाइन पर हैं तो कमल जी,
3: रवि जी, गुड आफ्टरनून।
0: सर कल आपसे बात नहीं हो सकी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन भाई आज आपका इंतजार था। कमल भाई, क्रिकेट के बारे में और खासकर वुमेन क्रिकेट के बारे में आपसे बढ़िया कौन हो सकता है जानकारी देने वाला। वैसे दिलचस्पी मेरी भी रहती है वुमेन क्रिकेट में, लेकिन भाई हम ही दो हैं जो कदर करते हैं, वरना बाकी तो मेन क्रिकेट में सब दिलचस्पी लेते हैं। कमल भाई क्या चल रहा बताइए, विमेंस वर्ल्ड कप?
3: सो रवि जी, वर्ल्ड कप तो T20 वर्ल्ड विमेंस का वर्ल्ड कप हैज रियली टेकन ऑफ वेरी वेल। ऑल द टीम्स लुक सो गुड, दे आर यू नो फिट, स्किल, दे आर अमेजिंग। पर आज का गेम जो है, टुडे श्रीलंका इज टेकिंग ऑन न्यूजीलैंड 2:30, और हमारा सेकेंड गेम है इंग्लैंड अगेंस्ट आयरलैंड, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग गेम। और ग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है इधर
0: बॉस। आज कौन से ग्राउंड में है, कहां पर है मैच आज?
3: ये साउथहैम्पटन में है, साउथहैम्पटन में ग्राउंड में
0: बॉल। अच्छा,
3: जी,
0: लेकिन
3: एंड इट्स लुकिंग ग्रेट।
0: ओके, हाँ, मौसम का क्या कहना है, डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी ना?
3: वेरी सनी, बहुत अच्छा वेदर है, द ग्राउंड इज लुकिंग ब्यूटिफुल, एंड प्लस द सपोर्टर्स जो आ रहे हैं, बिल्डअप हो रहा है, बट आई थिंक इट बी अ ग्रेट गेम बिकॉज इट्स गोइंग टू अ नेक्स्ट लेवल। बीजी, आपने अभी पता नहीं लेडीज क्रिकेट लेटेस्ट देखे है कि नहीं, बट आपको देखना चाहिए, ग्राउंड में आओ एक दिन और देखना, इतना स्किलफुल हो गया ये लोग।
0: नहीं नहीं, मैं तो आऊंगा, जरूर देखने आऊंगा, पर बात क्या पता है, मैं तो पुरुषों का क्रिकेट भी देखने जाता हूँ ना, तो क्रिकेट कम देखता हूँ। वो जो आईपीएल में वो लड़कियाँ जो वो क्या कहती है, झंडियाँ सी लेकर के डांस करती है, वो ज्यादा देखता हूँ।
3: आपको वहां से ही सीखे लगते
0: हैं। बेस्ट, इट्स वंडरफुल बीइंग विटनेस टू द मैच ऑफ वुमेन क्रिकेट। और मैं चाहता था, चल अब आपसे अक्सर बात हुआ करेगी जब तक ये वर्ल्ड कप चलता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कीप इन टच, और बताते रहेंगे, क्रिकेट का एंजॉय कराते रहेंगे लोगों को।
3: थैंक यू रवि जी, हैव अ लवली डे।
0: थैंक यू, बाय बाय।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: तो साहब, वुमेन क्रिकेट के बारे में बात हुई हमारी कमल प्रभाकर से। मैं कह रहा था कि चीयर गर्ल्स को देखने कुछ लोग जाते हैं, भाई मैं तो सची मुची कुछ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला भी हूँ, अपने कॉलेज की टीम में भी था, और क्रिकेट में दिलचस्पी रहती है, इसलिए मैं नहीं भी जब चल रहा हूँ दूर दूर ढूंढता रहता हूँ कहीं किसी का भी मैच चल रहा हूँ। पत्नी कहती है कि आप तो किसी का मैच भी देखने के लिए, या तो लोग होता अपनी टीम का देखें, अपने ब्रिटिश टीम इंग्लैंड की टीम खेल रही हो, या फिर भारत की टीम खेल रही हो, या एशिया की कोई टीम खेल रही हो, पर आप तो कहते हैं वो केनिया की टीम खेल रही है उसको भी देखने लग जाते हैं। दिलचस्पी होती है। तो साहब, अब वो साउथ और ट्रेवल वालों की बात बता दूं आपको, भाई वो कह रहे हैं कि मौका है, मौसम सुहाना है और आपको कहीं घूमने जाना है तो साउथ और ट्रेवल का नंबर मिलाना है, क्योंकि दे आर द विनर्स ऑफ द हार्ट्स ऑफ द ट्रेवलर्स और भाई जो सैलानी हैं उनके, लेकिन साथ में वो ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड के भी विजेता हैं। आप उनसे डील लीजिएगा, दे आर ऑफरिंग के बीच ब्रेक पैकेजेस या फिर सिटी एस्केप्स या फिर हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन, उसके लिए कॉन्टेक्ट कीजिएगा 02085748410।
2: ये है Like a Gold 10:35 AM।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: मैं भी गया और मेरा दिल भी गया। भाई चिंतन के विषय में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चिंतन बहुत अच्छा था। हमारे वो जगदीश जी तो कहते हैं कि मेरी पत्नी की डेथ हो गई थी और जब से उनकी डेथ हुई है तब से मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि कहाँ जाते हैं लोग दुनिया से जाने वाले, और आज आपके चिंतन में जानकारी मिली है, तसल्ली मिली है कि वो ईश्वर में विलीन होते हैं तो वो हमसे दूर नहीं है। लेकिन इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आए हैं। सारा पटेल कहती हैं, रवि जी कहते हैं कि जो चले गए हैं उन्हें हमें भूल जाएं, पर कैसे भूल जाएं? नहीं, भूलने के लिए नहीं सारा जी, भूल ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, वो रोए ना, बहुत दुखी ना हो, क्योंकि उनकी आत्मा तभी खुश होगी जब वो हमें हंसते खेलते फूलते फलते देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बच्चे तरक्की करेंगे, तो वो चाहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि पटेल साहब जी की पुण्य आत्मा जो है वो आशीर्वाद दे रही होगी बच्चों को और आपके परिवार को। तो वी कांट फॉरगेट देम, क्योंकि अपने जो अपने होते हैं भाई, और हम तो और भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं जो एशियन लोग होते हैं। वसंती एडमिंटन में कहती है, वो गीत जो लगाया था आपने मेरे नाम कर दो, कौन सा था बसंती, मुझे तो याद नहीं है बसंती, जो भी था अपने नाम कर लो। एजाज चैशा में सुन रहे हैं हंसा वोरा और अर्जन जी, थैंक यू वेरी मच। और भाई इसके अलावा जो और भी लोगों ने चिंतन के विषय में लिखा है, प्रीति बेल्जियम में सुन रही हैं, कहती हैं पापा जी की याद आ गई, मेरी अपनी बहन भी बहुत याद आई आपका चिंतन सुनकर। आज का चिंतन था भाई, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, भेजा था हमें शौनक परिवार ने और बालकिशन शौनक जी जिनका पिछले दिनों निधन हुआ और उनकी स्मृति में उन्हें समर्पित हमने किया आज का चिंतन, कि यही कहता भाई जाने वाले चले जाते हैं, जाने वालों की याद आती है, वो लौट के नहीं आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा प्रसन्न हो तो हमें उन्हें फलते फूलते अपने आप को तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाना है, बताना है कि देखो आपके बिना भी जी रहे हैं ना, और अच्छी तरह से आपके आशीर्वाद से हम तरक्की कर रहे हैं तो वो खुश होंगे। उल्लास टोरंटो में हमें सुन रही हैं, थैंक यू वेरी मच सुनीता शर्मा जी, सो नाइस ऑफ यू। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जो अपनों को भाई भुलाना, लेकिन अपनों को खुश रखने की कोशिश करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है।
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: साउथ हॉल ट्रैवल का भाई हमने बता दिया आपको कि वो आपको चाहते हैं कि छुट्टियों पे जाएं, दौरा करके आएं। भाई उनका फोन नंबर फिर दोहरा दूं, 0208-574-8410।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is like a gold.
2: Travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
3: Travelhub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit travelhubworld.com.
4: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
5: Latke halo ne nandala.
4: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
5: Meetha khara, khara.
4: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
6: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
7: Be part of a historic grand opening.
6: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
7: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
6: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-6333.
7: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Packed for the trip? Gifts? Passport?
12: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
11: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
12: Simzy?
11: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
13: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
14: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
15: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
16: No more worries for me or you.
17: Southall Travel, at all protected.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
18: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
0: ये शहनाइयां दे रही हैं दुहाई, कोई चीज अपनी हो रही है पराई.

0: जहाँ जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
3: सेलिब्रेट फादर्स डे ऑन संडे 21st ऑफ जून इन अंबाला स्टाइल। अंबाला स्वीट्स हैज बीन ब्रिंगिंग फैमिलीज टुगेदर थ्रू टेस्ट एंड ट्रेडिशन सिंस 1965, freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished

The greatness of Hemanda was other music directors used to call him for singing. ये है शंकर जय किशन फिल्म पतीता जिन्होंने गवाया था लता मंगेशकर के साथ हेमंता को. नेक्स्ट गाना कल्याण जी आनंद जी ने उनको गवाया था फिल्म ब्लफ मास्टर में. That's the greatness of Hemant Kumar. उनको याद कर रहे हैं आज on his 106th birth anniversary. The great Hemant Mukhopadhyay. जी हाँ, ये गाना हेमंता को गवाया था कल्याण जी आनंद जी ने. राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स. हीरो शम्मी कपूर. ब्लफ मास्टर 1963.

और नेक्स्ट गाना जो है फिल्म शर्त का, जिसमें संगीत उनका ही था। एक गाना है जो दो वर्जन्स है, फीमेल वर्जन एंड मेल वर्जन। गीता दत्त ने यही गाना गाया था जो हेमंदा ने गाया है, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। फिल्म प्रोडक्शन इन्होंने हेमंता बेला प्रोडक्शन के नीचे 20 साल बाद कोहरा, बीवी और मकान, राहगीर, खामोशी जैसी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की थी। हेमंत कुमार। Do you know he scored music for a Hollywood film, Siddharth? Conrad Rooks ki film thi, and it was the first Indian to play back for Hollywood. And he got a honorable citizenship for Baltimore. In 1980, he had a heart attack, and then he couldn't sing. Hemant Kumar, who passed away on 26th September 1989 due to a heart attack.

0: ए बोला चल पी जा।
1: नहीं दादा आज मूड नहीं है।
0: अबे मूड नहीं है, बीवी से झगड़ा हुआ, पी जा। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया ना, पी जा। माल कमाया है, पी जा। माल कमाया है तो और पी जा। अरे गमर खुशी का सबसे अच्छा पब्लू बुड़ो यही है।

0: है रक्षक।
1: महेंद्र कपूर, कल्याण जानन जी का संगीत, गुलशन बावरा, एंड दिस इज परिवार फिल्म।
2: स्टार ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय स्टार टूर्स। चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस। विजिट startours.co.uk।

बाली ब्रह्मण का नमस्कार एंड इट्स सैंडी शाह हियर टू टेक ओवर एंड राजबदन नो इज इट राजबदन यस इट इज ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 0208574-8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
5: गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह।

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। दो बैक टू बैक गीतों के साथ हमने स्वागत किया इस आवर का। मैं हूं खुश रंगना, लता मंगेशकर की आवाज में यह खूबसूरत गीत आप सबको सुनाया था फिल्म हेना से। एंड सेकेंड वॉज लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में तोहफा फिल्म से अलविदा मौसम। बहुत रिफ्रेशिंग लगते हैं ये गाने ना, मुझे ऐसे लगता ना, ऐसे होता ना कि जैसे बहुत गर्मी हो रही है हम जाते हैं और फिर ठंडे पानी से अपना चेहरा धो के आते हैं, लाइक बड़ा फ्रेश लग रहा है यार। तो कुछ कुछ गीत ना ऐसे रिफ्रेशिंग गीत हैं मेरे लिए। ओके, पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब। ट्यूसडे आ गया तो टेरिफिक ट्यूसडे मनाने आप और हम मिल गए यहाँ पे, आ गए साथ में। एंड हमेशा की तरह अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आप लोग अपनी अपनी अपनी अपनी रजिस्टर में जो है अटेंडेंस दर्ज करवा रहे हैं। बिल्कुल आइए, टिक मार्क किए जा रही हूँ मैं जितने हमारे ये सारे के सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स आ रहे हैं। एंड ऐसा कैसे होगा कि अश्विनी कोई असाइनमेंट नहीं देगी? चुपचाप आप बैठे बैठे अपना डिनर कैसे करोगे भाई? हाँ, फोन तो हाथ में लेके अश्विनी को मैसेज करना पड़ेगा। तो क्या सवाल लेके आई है? ओके, मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ आपके अपने बचपन में। अब हमने क्या कर डाला? हाँ, ऐसे आया। ओके, सो सवाल है आपके एग्जाम्स के दिनों से रिलेटेड। फिलहाल अब ए लेवल्स बच्चों के एग्जाम चल रही है, जीसीएसई एग्जाम्स चल रही है, तो कुल मिला के घर में अगर कोई जीसीएसई वाला है, ए लेवल्स वाला है, इन जनरल स्टूडेंट अगर घर में है तो पढ़ाई का मौसम है, क्योंकि एग्जाम का मौसम है। अलबेला मौसम उनके लिए कत्ते ही नहीं है भाई। कई बार लग रहा होगा कि क्यों ना हम उठ के भाग जाए। एक्चुअली विथ मी इट यूज टू हैपन फॉर जस्ट अ कपल ऑफ सब्जेक्ट्स। आई वॉज रियली गुड विद अल्जेब्रा। ज्योमेट्री के साथ में ना मेरी दोस्ती यारी हो ही नहीं पाई, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता क्या यार थियोरी लर्न करने है। चलो जहां तक रट्टा मार होता था ना, यस आई एम रियली गुड विथ रट्टा मार थिंग्स। एंड माय फ्रेंड्स यूज्ड टू ऑलवेज से कि तू अ एंड द ये तक नहीं भूलती है यार। कितने मतलब आई जस्ट डोंट नो, दैट्स द वे इट वाज फॉर मी कि मैं ना अगर मैं कोई चीज लर्न कर लेती थी तो इट यूज्ड टू बी विथ मी। पर मैथ्स में कभी कभी ऐसा हो जाता था। एंड नाउ दैट आई लुक बैक, मुझे लगता है कि जो हमारे सर थे, आई वॉज मोर स्केयर्ड ऑफ हिम रादर देन मैथ्स। है ना, कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि वो सब्जेक्ट जो है वो डरावना है। नहीं, कभी कभी वो टीचर्स ऐसे होते। तो कई टीचर्स हमारी ऐसी थी जिनकी वजह से हम उन सब्जेक्ट से भी बहुत प्यार करते थे। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू मैंने आज क्या टॉपिक छेड़ा, तो दैट टॉपिक इज कि आर यू अ नाइट आउल पढ़ाई करने के मामले में, या आप है अर्ली राइजर। विथ मी ऐसा होता था कि रात में 12 बजे के ऊपर, 12:02 भी हो जाए ना, तो आई यूज टू बी गुड़ुक, मतलब मैं सो जाती थी। And I used to wake up again by 1:30 AM, 2 AM for पढ़ाई करने के लिए। But 12 के आगे तो मतलब साक्षात देवता आ जाए, ठंडे पानी की फुहार मेरे चेहरे पे लगा दे, ना ना ना होता ही नहीं था, मेरी आँखें बंद। So tell me, है ना मज़ेदार सी चीज़। चले गए बचपन में, फटाफट अपने फ़ोन उठाइए और मुझे मैसेज कीजिए। वॉल्यूम आप रखना चाहते हैं ज़रूर रखिए, अमेजिंग से गीत है। This is the evening show with Ashwini.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.45 Indian rupee. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Gold.
4: Are bhang ka rang jama ho chaka chak phir lo paan chaba.
5: Oh. Mm-hmm.
4: Aha!

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। इट्स नियरली 32 मिनट्स पास्ट 7, 7:07. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मैंने आप सबसे सवाल पूछा है कि पढ़ाई के दिनों में आप रात भर जाग कर पढ़ाई कर सकते थे या सुबह जल्दी उठते थे, तो उसके आंसर्स फटाफट सब लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे अपने अपने दोस्तों के साथ एक जगह जमघट होता था, चाय के राउंड्स चलते थे और साथ में होती थी खूब सारी मस्ती अलॉन्ग विद पढ़ाई। अपने अपने किस्से कहानियाँ आप सुना रहे, कह रहे हैं थैंक यू तुम फिर से हमें ले चली अपने स्टूडेंट्स वाले दिनों में। सो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस गुजराती फिल्म, इट्स कॉल्ड जिंदगी वंस मोर। सो लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप एक्सक्लूसिवली विद धर्मा प्रोडक्शंस फॉर द गुजराती फिल्म जिंदगी वंस मोर स्टारिंग सिद्धार्थ रंदेरिया विच रिलीजेज एट सिनेमाज दिस वीकेंड। पेयर ऑफ टिकट्स मिलने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिर्फ वही लोग जाएं जिन्हें गुजराती समझ में आती है, बोलते हैं और गुजराती फिल्मों के शौकीन हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप ज़रूर अप्लाई करिए इसके लिए, लिखिए वर्ड जिंदगी झे नॉट जेड ओके जिंदगी। और ये स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली है थर्सडे 18th of June शाम 6 बजे, एक तो वीकडे है शाम 6 बजे हैं। प्लीज़ अगर आप जा सकते हैं ना तो किसी और के टिकट्स हम एक्चुअली ब्लॉक तो नहीं कर सकते ना, लेकिन जिंदगी जल्दी जल्दी 2 टिकट्स आपका कर रही हैं वेट। और ये होने वाला है द कोर्ट हाउस होटल नियर लंदन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन, और विनर्स को जो हैं दे कैन कलेक्ट टिकट फ्रॉम द वेन्यू ऑन द नाइट ऑफ द स्क्रीनिंग एंड टिकट्स आप किसी और को नहीं दे सकते। मैंने सारी की सारी डिटेल्स आपको बता दी है, लिखिए और फटाफट अपने नाम भेजिए, जिंदगी लिखिएगा पहले।
0: ये है लाइका गोल्ड द इवनिंग शो विद अश्विनी। नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे, जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: Days for London at Breakfast and Drive.
1: Looking to boost your career or just starting out? As the experts in online learning, the Open University has over 200 qualifications to choose from, like business, psychology, computing, and many more. With tutor support and courses that fit around your life, getting those in-demand skills employers are looking for isn't so far away. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:48 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आप सबको कलेक्शन बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए उसके पहले हम बात कर लेते हैं फटाफट, जो मैं आपको कल मैंने ब्लैक कॉफी थियरी समझाई, आज मैं आपको रिवर थियरी बताने वाली हूँ। रिवर थियरी क्या होती है? तो कोई भी नदी जो है वो बहती जाती है और कुछ उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, कितनी भी अड़चने आए फिर भी वो नदी बहते जाती है। हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसी है जो बहती चली जाती है, चाहे पत्थर आए चाहे कुछ भी चीज़ें आए, लेकिन वो अपने हिसाब से चलती रहती है। जितना हम चाहें कि ये हमारे हिसाब से चले, हाँ वो चलेगी, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। तो ज़िंदगी में जब हम चाहते हैं कि चीज़ें बस हमारे हिसाब से चले, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स का प्लान कुछ और होता है भाई, और हम कुछ और समझ के बैठे हैं। तो इसीलिए ऊपर वाले को शुक्रिया करें कि आपकी ज़िंदगी नदी की तरह बह तो रही है, कम से कम कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो ये बहाव भी नहीं होता है। तो जैसे जो भी चीज़ें आए ना, वो ऑलरेडी प्लान्ड है, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए प्लानिंग की है। एक्सेप्ट करिए और ज़िंदगी को जिए एक नदी की तरह। लास्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं आप और हम।
1: Ashwini, brightening up your weeknights.
2: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
3: This is huge.
2: Thadikalal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
3: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
2: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
3: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
2: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only one.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
9: Lights on, shutters up, staff ready.
8: But today's customers don't start on the high street.
9: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
8: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
9: They walk into your competitors.
8: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: Feel good classics all day. Like a Gold.
1: सेकेंड आवर का आगाज हमने किया तो बहुत ही बेहतरीन गीतों के साथ में, घातक पे, जो रिलीज इन 1996, उस फिल्म से अलका याग्निक, शंकर महादेवन एंड अनु मलिक की आवाज में, कोई जाए तो ले आए दिल दिल दिल, है ना That track. Second was Pigalta Aasman Se. I just love this ting ting ting ting. Alka Yadnik and Kishore Kumar ki awaaz mein Teri Meri Prem Kahani. The second hour aap hum aur ye melodious journey पूरे और एक घंटे के लिए टिल 9 o'clock, उसके बाद में लास्ट आवर हमारा शुरू होगा. सो कैसे चल रहा है डिनर, खा पी लिए? सेकेंड डे ऑफ द वीक जब खत्म होता है तो उत्साह आपका द्विगुणित हो जाता है. एक तो आई लव माय हिंदी, द्विगुणित इज डबल. अच्छा चलो एक नया शब्द आप सीख लो, द्विगुणित यानी कि डबल. ओके सो आप लोग अपनी डिनर प्लेट्स की मुझे फोटोज भेजते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बता देती हूँ. जितने महाराष्ट्रीयन लोग हैं उन सभी को ये पता है, आप लोग जिसे कहते हैं रायता, ओके, और जो हम फैलाते भी हैं ह्यूमंस इन जनरल वाला रायता नहीं भाई, रायते को हम महाराष्ट्रियंस बोलते हैं कोशिंबीर. ओके, KOSHIMBIR, कोशिंबीर. सो कोशिंबीर जो है आप किसी भी वेजिटेबल की बना सकते हैं, जनरली क्यूकुम्बर दही में ऐड करके होती है, या फिर हो जाता है कैरेट होता है, या फिर प्याज और टोमेटो की कोशिंबीर होती है, एंड पत्ता गोभी बारीक काट लीजिए, उसमें डाल दीजिए नट पाउडर, उसकी कोशिंबीर बन जाती है. और इन सब का बेसिकली जो तड़का है वो है बहुत सिंपल, ठीक है, बेस किसी भी आप वेजिस का ले लीजिए. कोशिंबीर में हम लोग तेल में हींग, जीरा, हल्दी एंड रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज डालनी है ग्रीन चिलीज डाल दीजिए. तो आपने अपने रायते में ये तड़का डाल दिया, उसके साथ में आपने डाल दिया हरा धनिया जिसको हम कहते हैं कोथिंबीर, ओके, कोशिंबीर में कोथिंबीर, एंड नमक एंड थोड़ा सा शक्कर, बस मिक्स कर लीजिए. ये अकेली कोशिंबीर आपके लिए बहुत हेल्दी होती है. अगर आपको रोटी नहीं खानी है, मुझे दाल चावल नहीं खाने, कोशिंबीर खा लो, आपका पेट भर जाएगा. हेल्दी फ्रेशली मेड कोशिंबीर, ठीक है, तो कोशिंबीर खाइए, खुश रहिए, अश्विनी का शो ट्यून इन करिए, मंडे से फ्राइडे तक होता है शाम 7 से 10 आपका और मेरा साथ. टेरिफिक ट्यूसडे में कौन सा गीत सुनाऊंगी, अभी काय को बताऊंगी मैं थोड़ी देर में सुनाने जो वाली हूँ.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can get you up to 126 Indian rupees and 45 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 32 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। थोड़ा मस्ती भरा गीत सुना दिया ना आप सभी को, बुड्ढा मिल गया। इस फिल्म से सुनाया था पिछला गीत हमने आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। नेक्स्ट ट्रैक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक लता मंगेशकर की आवाज में चिराग फिल्म से तेरी आंखों के सिवा।

0: भाई आप लोगों का स्वागत तो मैंने पहले ही कर दिया था, है ना। और दो बैक टू बैक गीत आपको सुनाया, पहला गीत मैंने सुनाया था और प्यार हो गया, विच वॉज रिलीज इन 1997 सोनू निगम की आवाज़ में। सेकेंड ट्रैक आपको सुनाया था दो प्रेमी, विच वॉज रिलीज इन 1980 मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, मौसम पे जवानी है। सो ऐसा है, कुल मिला के 90s वाले बच्चे खुश हो गए और 80s वाले बच्चे भी खुश हो गए और मैं खुश हो गई क्योंकि कई लेट कमर्स अभी आके अपनी अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं। और मेरे प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स जो हैं, हाँ जी भाई साहब, आप बस मुस्कुराओ। दीदी आप ना, हो गया किचन में काम, हो गया ऑफिस से आके ड्राइविंग कर रही थी, चलो कोई ना, लास्ट आवर में जो है आपके एंटरटेनमेंट की पूरी जिम्मेदारी मेरे तरफ। ये गीत मैंने सुना दिया, आप ऐसा है कि आप कहोगे अश्विनी तुम इतनी रात में 9:22 पे जोशे जवानी हाय रे हाय करवाने वाली हो। मुकेश जी की आवाज़ में अगला गीत आप सभी के लिए।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 126 Indian rupees and 45 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Like a Gold.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप जी में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच फुल टाइम हो चुका है, दोनों ने दो दो गोल दागे हैं। ग्रुप आई में फ्रांस और सेनेगल के बीच 8 बजे मैच शुरू हुआ, एक भी गोल अभी तक नहीं बना है, 57 मिनट्स हो चुके हैं। इराक और नॉर्वे में जो मैच होने वाला है वो शुरू होगा रात 11 बजे। एंड डोंट फर्गेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। तो इट्स नियर, हाँ 9:22। अब मैं ऐसे क्यों खींच रही थी ऐसे, क्योंकि वो 22 मिनट हुए नहीं थे। सो इट्स 22:09। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। ओके, तो हमारी गोल्ड नाइट सर्विस है, विच इज़ ओवरनाइट सर्विस। रात में काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, नींद नहीं आ रही, प्लीज़ गोल्ड नाइट ज़रूर लगाइएगा। ड्राइविंग कर रहे हैं ज़रूर लगाइएगा, बहुत प्यारे गीत हैं। लाइका रेडियो 90s के गीत अगर पसंद करते हैं, 90s वाले आप बच्चे हैं, ज़रूर पसंद करेंगे। लाइका रेडियो 90s सुनिएगा, लाइका रेडियो पंजाबी, ओए जी बल्ले बल्ले, पंजाबी गीतों के शौकीन हैं ज़रूर सुनिएगा। एंड लाइका गोल्ड 2, बॉलीवुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप, इतनी सारी चीज़ें आपके लिए लाइका मीडिया लेके आया है, तो ज़रूर इन्जॉय करिए। और हमारे शो के बारे में आपको क्या लगता है, इसके लिए भी आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। तो गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, चलो यार मैं ही बता देती हूँ। पहला तो मैं सुनाने वाली हूँ आपको हरिहरन एंड KS चित्रा की आवाज़ में। कौन सा गीत है भाई? ज़िद्दी फिल्म से। अगेन 90s वाले बच्चे खुश होंगे, क्योंकि हरिहरन जो है ये हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं। और उसके बाद में होगी कव्वाली, चौदहवीं का चांद से शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज़ में आप सभी के लिए लाई हूँ ये कव्वाली। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Dale, Dell's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
6: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash, hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
5: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
6: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
5: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
7: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
8: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June, in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
9: after a sold-out show at the Royal Albert Hall. Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी Bosch बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की Bosch गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
12: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: अच्छा भाई, किशोर कुमार फैंस, गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्राणी संजय विथ हिनल एंड 515 बैंड. इट टेक्स प्लेस ऑन दिस फ्राइडे 19th ऑफ जून एट द प्रिंस रेजेंट होटल चिगवेल एसेक्स. टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और कॉल 0208514 5400. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड रेडियो. ओके, और अब टाइम हो गया है आप सभी की फेवरेट कव्वाली सेक्शन का.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit

0: smallplastic.com.
1: Two businesses.
2: Same town.
1: Same service.
2: One appears on page one of Google.
1: The other doesn't.
2: Guess which one gets the customer?
1: The truth is brutal.
2: The first page of Google gets the business.
1: Everyone else gets what's left.
2: So here's the real question.
1: When your customers search for what you sell, do they find you?
2: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
1: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
4: અંકલ તમે પહેલાથી આવા જ છો.
5: આવા એટલે કેવા?
3: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
5: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે.
3: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
5: તો થઈ જાય. Jindagi once more.
6: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
7: For £1, you'll get 126.79 Indian rupee, 373.53 Pakistani rupee, 449.56 Sri Lankan rupee, 164.85 Bangladeshi taka, 84.80 Afghani, 173.81 Kenyan shilling and 1.34 US dollars.
0: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
8: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
7: Gold is currently trading at £104 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
7: जब ये शोले का बैकग्राउंड म्यूजिक आता है आप सभी समझ जाते हैं ना इस समय तक. तो चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 44 मिनट्स पास 9, 44 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी मैंने आपको बताया कि मुझे 35 के ऊपर की गिनती का थोड़ा इशू है. 44 इज़ राइट, येस आई एम श्योर. तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस, बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं. और बता दें आपको जिंदगी वंस मोर वाली जो गुजराती मूवी है उसकी विनर है रक्षा किमी पटेल जी, कंग्रेचुलेशंस. और कल भी शायद ही कॉम्पिटिशन रहेगा तो ध्यान से सुनिएगा जब हम लोग अनाउंस करते हैं कॉम्पिटिशन के बारे में. बिल्कुल, अगर आप गुजराती समझते हैं, आपको गुजराती में इंटरेस्ट है तो ये फिल्म बड़ी प्यारी फिल्म है, जाके ज़रूर देखिएगा. इट विल बी ऑन थर्सडे. ओके, एंड हमेशा की तरह बस यही कहूँगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है यार, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, है ना. प्यार दो, प्यार लो. प्यार एक्चुअली काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए. एक तो पहली चीज़ तो हम ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपनी लाइफ को. और दूसरी चीज़, पावर तो किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए चाहिए. नाम शो हम सब हैं म्यूज़िकल फैमिली, तो आप में से शायद ही कोई अपने पावर का यूज़ करता होगा. सो आप लोगों के कमेंट्स में जी बिल्कुल फटाफट बोलने वाली अश्विनी इतने प्यारे प्यारे नाम आप लोगों ने मुझे दे रखे हैं ना कि जब मैं यहाँ से निकलती हूँ रात में तो आप लोगों के जब मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है, प्लस एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आती है ना. मुझे अपनी स्माइल पसंद है, एक्चुअली मैं खुद की बड़ी फ़ैन भी हूँ इसलिए. एनीवेज, लास्ट टू ट्रैक्स मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना रही हूँ अगले दो गीत. प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, कल हम सबका फेवरेट डे है मिड ऑफ द वीक. आई लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट.
8: ये है लाइका गोल्ड.
9: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
6: गारंटेड.
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
6: फोन 020-8574-8410.
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
8: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
7: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
9: हाय हेलो के छो हूँ छु के जी दवे अना आ शू थई गयो अरे अरे पब्लिक डिमांड फरीथी आवी रही छु लंडन मारो नवो नाटक लईने पत्नी प्रीमियर लीग એટલે કે PPL yes from 3rd July till 12th of July. Wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo
10: Patni Premier League shows at Risley, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information call Deepa on 07947561947.
11: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
12: गड़बड़ घोटाला छे, problems मोटा छे, पर बदु ऑलराइट छे.
13: नेचे ने back to back तरण movies जोई ली थी.
12: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie बदु ऑलराइट छे.
13: बेहतर कलाकार पाचो Yes, ne pachi badu alright thai jase.
12: In cinemas on 12th of June. For more info, visit Bakrania Media's Instagram handle.
14: Evu lage che ke picture chalche.
0: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
15: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold रेडियो Leica रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Leica रेडियो मिडलैंड्स पर.
0: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.
16: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
5: Leica Group par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: Laika Gold, the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
1: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
0: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: गड़बड़ घोटाला छे, problems मोटा छे, पर बदु alright छे.
8: नेचे ने back to back तरण movies जोई ली थी.
7: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie बदु alright छे.
8: बेहतर कलाकार पाचो आये जैसे पच्ची बदु alright थे जैसे.
7: In cinemas on 12th of June. For more info, visit Bakrania Media's Instagram handle.
9: ये वो लगे छे के picture charge.
10: You know, I fan shout at football matches.
11: Oh, wake up!
10: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Laika Gold par.